0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि संपूर्ण कलीसिया में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रेरिताई की प्रतिस्थापना हो, ताकि मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव और कलंक को अभिभूत किया जा सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और फादर संजय दिलीप इक्का। श्रोताओं, 18 से 28 सितंबर तक दुनिया भर के नेता संयुक्त राष्ट्र महासभा के 21वें उच्च स्तरीय सप्ताह के लिए न्यूयॉर्क में थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना के 8 दशक बाद भी यह दुनिया के 193 देशों का प्रमुख साझा मंच है, जहां युद्ध और शांति से लेकर विकास, जलवायु परिवर्तन और मानवाधिकारों तक आज की बड़ी वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा होती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 21वें सत्र के दौरान उच्च स्तरीय जनरल डिबेट मंगलवार 22 सितंबर से शुरू हुई, जिसमें विश्व नेता महासभा के हॉल में स्थित प्रतिष्ठित हरे संगमरमर के मंच से अपनी बात दुनिया के सामने रखे। यूएन महासभा के अध्यक्ष खलीलुर रहमान ने सोमवार 28 सितंबर को जनरल डिबेट का समापन करते हुए कहा कि नेताओं ने हिंसक टकराव, विकास में ठहराव, बढ़ती असमानता और तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी जैसे वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि अलग अलग दृष्टिकोणों के बावजूद सभी नेताओं के संदेशों में एक साझा विश्वास झलका, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका अपरिहार्य है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
3: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के कार्यकाल में अब लगभग 100 दिन का समय शेष है और उन्होंने यूएन प्रमुख के तौर पर अंतिम बार जनरल डिबेट को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विश्व भर में नजर आ रहे संकट कोई अलग अलग समस्याएं नहीं हैं, बल्कि उसी बुनियादी संघर्ष की अलग अलग अभिव्यक्ति हैं। शक्ति का इस्तेमाल किसके द्वारा और किस तरह किया जाए, उन्होंने आगाह किया कि महानतम शक्ति वर्चस्व हासिल करने की ताकत नहीं है, बल्कि ऐसे भविष्य का निर्माण करने की है जो कि सभी के लिए काम करे। यूएन प्रमुख ने मौजूदा दौर की चुनौतियों के प्रति आगाह करते हुए कहा,
4: Trust is frayed and the climate crisis went from distant warning to daily reality and artificial intelligence।
3: महासचिव एंटोनियो गुटेरेश कह रहे थे कि भरोसा दरक चुका है, जलवायु संकट कोई दूर नजर आने वाली चेतावनी के बजाय दैनिक वास्तविकता बन चुका है और कृत्रिम बुद्धिमता या एआई जिस तेजी से आगे बढ़ रही है वो उन लोगों को भी हैरान कर दे रही है जिन्होंने उसे तैयार किया है। महासचिव ने क्षोभ जताया कि युद्ध के दौरान आम नागरिकों, मानवीय सहायता कर्मियों को निशाना बनाया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय कानून को दरकिनार किया जा रहा है। यूएन प्रमुख ने मध्य पूर्व, यूक्रेन, सूडान और म्यांमार में धधकते संकटों पर कहा कि वहां युद्ध विराम के केवल इतने मायने हैं कि अब वहां पहले से कम गोलाबारी हो रही है, मगर आम नागरिक इसका खामियाजा अब भी भुगत रहे हैं। यूएन प्रमुख ने विश्व नेताओं से भोजन, स्वच्छ जल, शिक्षा व स्वास्थ्य देखभाल से वंचित अरबों लोगों के लिए मदद का आग्रह किया। साथ ही आगाह किया कि जिस तरह से डेटा, कंप्यूटिंग क्षमता और एल्गोरिथम शक्तिशाली होते जा रहे हैं, उससे ये स्पष्ट है कि खतरा टेक्नोलॉजी में नहीं है बल्कि जवाबदेही के अभाव में है। इसलिए एआई के इस्तेमाल में रक्षा उपायों को अपनाया जाना होगा और जीवन मृत्यु से जुड़े प्रश्नों को टेक्नोलॉजी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए अध्यक्ष खलीलुर रहमान ने अपने संबोधन में ध्यान दिलाया कि यूएन ने हर परीक्षा का सामना किया है और इसका कोई वास्तविक विकल्प नहीं है और इसके बजाय किसी अन्य व्यवस्था की कल्पना कर पाना भी कठिन है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक भरोसे को फिर से बहाल करने के लिए जरूरी है कि कठोर वास्तविकताओं को स्वीकार किया जाए और जरूरी कदम उठाए जाएं।
2: करीब 6 वर्ष पहले वैश्विक महामारी कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे करोड़ों लोग संक्रमण का शिकार हुए, लाखों लोगों की मौत हुई, अनेक देशों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई थी और वैश्विक अर्थव्यवस्था ठहर गई। विश्व नेता यूएन मुख्यालय में शुक्रवार 25 सितंबर को उस विशाल स्वास्थ्य चुनौती के लिए सबक की समीक्षा करने और भावी महामारी की रोकथाम व निपटने के लिए नए तौर तरीकों पर चर्चा के लिए एक अहम बैठक में हिस्सा लिया। ज्यादा जानकारी के साथ अंशु शर्मा।
5: कोविड-19 महामारी को लगभग 6 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा सबक आज भी दुनिया के सामने है कि कोई भी देश अकेले सुरक्षित नहीं रह सकता है। शुक्रवार को यूएन मुख्यालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में विश्व नेताओं ने इसी सबक की समीक्षा की और भावी महामारियों से निपटने की तैयारी मजबूत करने पर जोर दिया। WHO प्रमुख टेड्रोस एडेनॉम गेब्रेसस ने कोविड-19 को पिछले 100 वर्षों का सबसे गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य संकट बताया। उन्होंने कहा कि महामारियां सीमाओं का सम्मान नहीं करती, इसलिए देशों को साझा तैयारी, तेज कार्रवाई और समानता पर आधारित स्वास्थ्य सहयोग की जरूरत है। इसी दिशा में हाल ही में एक नई व्यवस्था पर बातचीत आगे बढ़ी है, ताकि भावी महामारी की स्थिति में जल्द से जल्द और सभी देशों तक समान रूप से सहायता पहुँच सके। WHO इस समझौते पर विचार विमर्श में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। UN उप महासचिव आमिना मोहम्मद ने चेतावनी दी कि जब संक्रमण धीमा पड़ता है तो अक्सर धन, वादे और राजनीतिक संकल्प भी कमजोर पड़ने लगते हैं। बैठक में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत बनाने, महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया को बेहतर करने पर बल दिया गया।
2: हिमालय क्षेत्र में घातक बाढ़ की घटनाओं से लेकर यूरोपीय देशों के जंगलों में आग और झुलसा देने वाली गर्मी तक बदलती जलवायु और उसके दुष्परिणामों ने 2026 के दौरान बार बार आगाह किया है। यह स्पष्ट है कि आम नागरिकों की जलवायु संकट से रक्षा और जलवायु परिवर्तन की वजह बनने वाली हानिकारक ग्रीन हाउस गैस में तेज कटौती के लिए जल्द कदम उठाए जाने होंगे। इसी सिलसिले में विश्व नेताओं ने कार्यवाही की अपनी प्राथमिकताएं तय करने के लिए बुधवार को महासभा के सत्र के दौरान एक बैठक में चर्चा की। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
3: इस बैठक के दौरान ऐसे ठोस रोडमैप को तैयार करने पर चर्चा हुई, जिसमें जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयले, तेल, गैस का इस्तेमाल रोकने के लिए स्पष्ट समय सीमाएं तय की जाएं। वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार G20 समूह के देशों से इस बदलाव को आगे ले जाने का आग्रह किया गया। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्तीय संसाधनों को जुटाना एक बड़ी चुनौती है। UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेश का कहना है कि जीवाश्म ईंधन कंपनियां बड़ा मुनाफा कमा रही हैं, जबकि इसकी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। महासचिव ने वर्ष 2035 तक 1300 अरब डॉलर की व्यवस्था करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है और कहा है कि विकासशील देशों की मदद के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर जुटाने होंगे। बैठक में नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के लिए नेटवर्क, बिजली ग्रिड तैयार करने और मौसमी आपदाओं के लिए समय पूर्व चेतावनी प्रणालियों पर भी जोर दिया गया। जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों में सबसे स्पष्ट नजर आने वाला प्रभाव है समुद्री जलस्तर का बढ़ना, जो कि कुछ देशों के लिए उनके अस्तित्व का संकट भी बन गया है, क्योंकि उनके डूबने का खतरा बढ़ रहा है। इस विशाल संकट से निपटने के मुद्दे पर केंद्रित एक अन्य बैठक में एक नए घोषणा पत्र को पारित किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूती देने और निचले तटीय इलाके वाले देशों को समर्थन देने की बात कही गई है। विश्व भर में तटीय इलाकों में रहने वाले 77 करोड़ लोग समुद्री जल स्तर में हो रही वृद्धि से प्रभावित हैं। इस संकट से निपटने के लिए जरूरी है कि वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि को रोकने के उपाय किए जाएं, बढ़ते जल स्तर और डूबने के खतरे का सामना कर रहे लोगों का समर्थन किया जाए, बचाव उपायों को अपनाया जाए और जरूरी हो तो कानूनी विकल्पों का भी सहारा लिया जाए।
2: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने संभावना की कला सबों को साथ लाना की विषय वस्तु से जमा हुए कलाकारों और क्यूरेटरों को संबोधित किया। उन्होंने उनके कार्य और सहयोग हेतु कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हुए कहा, मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। गियो डेका प्रद्वीप पर महिलाओं के कैद खाने में बनाए गए पवेलियन की याद की, जिसकी भेंट संत पापा फ्रांसिस ने की थी। यह केवल कैद खाने में कला के कार्यों से संबंधित नहीं था, बल्कि उसकी अक्सर दबी हुई सच्चाई को प्रकट करते हुए कला और शिक्षण की ओर ध्यान आकर्षित कराना था। मानव अपने जीवन में सदैव ही अपने अनंत लक्ष्य की ओर अग्रसर होने को आमंत्रित किया जाता है। वास्तव में कला अपने में एंटीना की भांति है, जो मानव हृदय के बड़े सवालों को पकड़ लेता है, जो कई बार एक रुदन में और बहुधा एक फुसफुसाहट में व्यक्त होती है, जो उन्हें सुनाती, देखती और बांटती है। कला के संबंध में संत अगस्टिन द्वारा हृदय की बेचैनी चाह की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए संत पापा लियो ने कहा, सच्ची कला अपने में बेचैनी प्रकट करती है। कलीसिया ने कला को कभी भी एक वस्तु मात्र नहीं देखा है। संत अगस्टिन के विचारों को प्रकट करते हुए संत पापा ने कहा कि कला जो अपने में सच्ची होती लोगों के हृदयों में बेचैनी उत्पन्न करती है। कलीसिया के लिए कला सुनने की एक बुनियादी जगह है, एक ऐसी जगह जहां कोई भी अपने को मानवता की उम्मीदों और उसके जख्मों, सुंदरता, न्याय और शांति की प्यास तथा उसके अर्थ से स्पर्श होता पाता है। संत पापा ने कहा, कला एक तरह की खोजी इंजन है। यह सूची क्रम से नहीं बल्कि पूछताछ से आगे बढ़ती है। संत पापा 14वें ने संत पापा लियो 6वें के वचनों को दोहराते हुए कहा, आज मैं भी आपसे कहता हूँ, कलीसिया को आपकी जरूरत है, खासकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता की इस अवधि में, जिसमें मानव कला को मशीनों से बनी कला से अलग करना बहुत जरूरी हो गया है। हम कला और मशीन से उत्पन्न चीजों में सात्विक अंतर को पाते हैं। एल्गोरिदम में मानवीय चमक की कमी होती है, संस्कृति और कला इस वास्तविक चमक को बचाए रखती है। वैटिकन के लूर्द गोरोटो में 1300 लोगों ने, जिसमें 700 बच्चे शामिल थे, संत पापा लियो के संग 5 अलग अलग भाषाओं में विश्व शांति हेतु मरियम से प्रार्थना की। कुमारी मरियम को समर्पित अक्टूबर के महीने की पहली तारीख को विश्व के लाखों बच्चों ने विश्व शांति हेतु माता मरियम से रोजरी प्रार्थना की। करीब 1300 लोगों ने वैटिकन स्थित लूर्द के गोरोटो में माता मरियम के पास माला विनती की, जिसमें बच्चों की संख्या 700 थी। ये बच्चे रोम के विभिन्न पल्लियों और विद्यालयों से जमा हुए थे, जिन्होंने संत पापा लियो 14वें के संग मिलकर विश्व भर के अन्य 1 मिलियन बच्चों के संग रोजरी प्रार्थना इतालवी, स्पानी, उर्दू, जर्मन और अरबी भाषा में की। यह रोजरी बिनती दुनिया भर के लोगों के जख्मों और उम्मीदों की ओर ध्यान आकर्षित कराती है, जैसे कि यूक्रेन के बच्चे और युद्धग्रस्त पीड़ित देशों, लेबनान, सीरिया और पवित्र भूमि यरूशलेम के परिवार, पाकिस्तान और दुनिया भर में सताए जा रहे ख्रिस्तियों के अलावे दक्षिणी सूडान में मेल मिलाप के साथ क्यूबा और वेनेजुएला के परिवारों में शांति और एकता हेतु। रोजरी माला की प्रार्थना के पूर्व ख्रिस्तीय एकता को बढ़ावा देने वाले विभाग के प्रमुख कार्डिनल कॉट कॉच ने बतलाया कि यह पहल बच्चों के लिए एक निमंत्रण है, जहां वे कुमारी मरियम के सानिध्य में आते हुए उनके संग मिलकर विश्व के दुखों को यीशु तक पहुंचा सकते हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा, छोटे बच्चों की आवाज जो पूरे भरोसे में अपने को ईश्वर के लिए समर्पित हैं, ईश्वर के हृदय में एक खास जगह बनाते हैं। उन्होंने कहा, रोजरी एक सरल प्रार्थना है जिसे हर कोई कर सकता है। संत पापा ने इस बात की याद दिलाई कि हम यीशु को उनके जीवन के महत्वपूर्ण समय और स्थितियों में देखते हैं। लूर्द के गोरोटो में रोजरी प्रार्थना में सहभागी हो रहे सबों को संत पापा ने इस बात की याद दिलाते हुए कहा कि हम अपने जीवन में अच्छा व्यवहार करें, चाहे हम जहां कहीं हों। उन्होंने कहा, प्रार्थना के साथ साथ अच्छे कार्य और प्रेम भरे काम भी होने चाहिए। केवल ऐसा करने के द्वारा हम शांति प्रसारित
करते हैं। उधर कार्डिनल मत्तियो जुप्पी मास्को की प्रेरिताई के तीसरे दौर से लौटे। अपने इस भेंट में उनकी वार्ता का एक मुख्य बिंदु खोए हुए लोगों की खोज, यूक्रेन के बच्चों की वापसी और यूक्रेन युद्ध बंदियों से भेंट रही। जुप्पी ने मास्को की अपनी प्रेरित यात्रा का तीसरा दौर पूरा किया और 30 सितंबर को वैटिकन लौटे। इसके पूर्व उन्होंने 2023 को जून के महीने में और अक्टूबर 2024 को अपना दूसरा दौर किया था। कार्डिनल ने यूक्रेन युद्ध बंदियों के एक कैंप का दौरा किया। उन्होंने उनसे बातें की और संत पापलियो 14वें की ओर से उनके प्रति सामीप्य के भाव प्रकट करते हुए इस बात की उम्मीद जताई कि वे जल्द ही घर लौट सकेंगे। मास्को में प्रेरित कार्यों के लिए नियुक्त अधिकारी महाधर्माध्यक्ष जोवानी एदे एलिनो ने इस 3 दिवसीय दौरे के दौरान कार्डिनल जुप्पी का साथ दिया। उधर जायद अवार्ड फॉर ह्यूमन फ्रेटर्निटी ने 2027 के लिए अपनी 5 सदस्यों वाली न्यायिक समिति की घोषणा की है, जो उन लोगों और संगठनों को पहचान प्रदान करती है जो मानवीय भ्रातृत्व और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। संस्कृति को प्रोत्साहन देने हेतु गठित पम धम पीठ के सेवानिवृत्त अध्यक्ष कार्डिनल जियान फ्रांको रावसी को 2027 के जायद अवार्ड फॉर ह्यूमन फ्रेटर्निटी की न्यायिक समिति में शामिल किया गया है। 30 सितंबर को अबू धाबी में यह घोषित किया गया कि 5 सदस्यों वाला यह दल अवार्ड के 8वें संस्करण में पुरस्कार प्राप्त करने वालों का चुनाव करेगा। यह वार्षिक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2009 में अबू धाबी में संत पापा फ्रांसिस और अल अजहर ग्रैंड इमाम अहमद अल तैयब के बीच हुई मिलन के उपरांत शुरू किया गया था। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि संपूर्ण कलीसिया में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रेरिताई की प्रतिस्थापना हो, ताकि मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव और कलंक को अभिभूत किया जा सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और फादर संजय दिलीप इक्का। श्रोताओं, 18 से 28 सितंबर तक दुनिया भर के नेता संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सप्ताह के लिए न्यूयॉर्क में थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना के 8 दशक बाद भी यह दुनिया के 193 देशों का प्रमुख साझा मंच है, जहां युद्ध और शांति से लेकर विकास, जलवायु परिवर्तन और मानव अधिकारों तक आज की बड़ी वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा होती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान उच्च स्तरीय जनरल डिबेट मंगलवार 22 सितंबर से शुरू हुई, जिसमें विश्व नेता महासभा के हॉल में स्थित प्रतिष्ठित हरे संगमरमर के मंच से अपनी बात दुनिया के सामने रखे। यूएन महासभा के अध्यक्ष खलीलुर रहमान ने सोमवार 28 सितंबर को जनरल डिबेट का समापन करते हुए कहा कि नेताओं ने हिंसक टकराव, विकास में ठहराव, बढ़ती असमानता और तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी जैसे वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि अलग अलग दृष्टिकोणों के बावजूद सभी नेताओं के संदेशों में एक साझा विश्वास झलका, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका अपरिहार्य है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
3: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के कार्यकाल में अब लगभग 100 दिन का समय शेष है और उन्होंने यूएन प्रमुख के तौर पर अंतिम बार जनरल डिबेट को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विश्व भर में नजर आ रहे संकट कोई अलग अलग समस्याएं नहीं हैं, बल्कि उसी बुनियादी संघर्ष की अलग अलग अभिव्यक्ति हैं। शक्ति का इस्तेमाल किसके द्वारा और किस तरह किया जाए, उन्होंने आगाह किया कि महानतम शक्ति वर्चस्व हासिल करने की ताकत नहीं है, बल्कि ऐसे भविष्य का निर्माण करने की है जो कि सभी के लिए काम करे। यूएन प्रमुख ने मौजूदा दौर की चुनौतियों के प्रति आगाह करते हुए कहा,
4: Trust is frayed and the climate crisis went from distant warning to daily reality and artificial intelligence।
3: महासचिव एंटोनियो गुटेरेश कह रहे थे कि भरोसा दरक चुका है, जलवायु संकट कोई दूर नजर आने वाली चेतावनी के बजाय दैनिक वास्तविकता बन चुका है और कृत्रिम बुद्धिमता या एआई जिस तेजी से आगे बढ़ रही है वो उन लोगों को भी हैरान कर दे रही है जिन्होंने उसे तैयार किया है। महासचिव ने क्षोभ जताया कि युद्ध के दौरान आम नागरिकों, मानवीय सहायता कर्मियों को निशाना बनाया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय कानून को दरकिनार किया जा रहा है। यूएन प्रमुख ने मध्य पूर्व, यूक्रेन, सूडान और म्यांमार में धधकते संकटों पर कहा कि वहां युद्ध विराम के केवल इतने मायने हैं कि अब वहां पहले से कम गोलाबारी हो रही है, मगर आम नागरिक इसका खामियाजा अब भी भुगत रहे हैं। यूएन प्रमुख ने विश्व नेताओं से भोजन, स्वच्छ जल, शिक्षा व स्वास्थ्य देखभाल से वंचित अरबों लोगों के लिए मदद का आग्रह किया। साथ ही आगाह किया कि जिस तरह से डेटा, कंप्यूटिंग क्षमता और एल्गोरिथम शक्तिशाली होते जा रहे हैं, उससे ये स्पष्ट है कि खतरा टेक्नोलॉजी में नहीं है बल्कि जवाबदेही के अभाव में है। इसलिए एआई के इस्तेमाल में रक्षा उपायों को अपनाया जाना होगा और जीवन मृत्यु से जुड़े प्रश्नों को टेक्नोलॉजी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के लिए अध्यक्ष खलीलुर रहमान ने अपने संबोधन में ध्यान दिलाया कि यूएन ने हर परीक्षा का सामना किया है और इसका कोई वास्तविक विकल्प नहीं है और इसके बजाय किसी अन्य व्यवस्था की कल्पना कर पाना भी कठिन है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक भरोसे को फिर से बहाल करने के लिए जरूरी है कि कठोर वास्तविकताओं को स्वीकार किया जाए और जरूरी कदम उठाए जाएं।
2: करीब 6 वर्ष पहले वैश्विक महामारी कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे करोड़ों लोग संक्रमण का शिकार हुए, लाखों लोगों की मौत हुई, अनेक देशों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई थी और वैश्विक अर्थव्यवस्था ठहर गई। विश्व नेता यूएन मुख्यालय में शुक्रवार 25 सितंबर को उस विशाल स्वास्थ्य चुनौती के लिए सबक की समीक्षा करने और भावी महामारी की रोकथाम व निपटने के लिए नए तौर तरीकों पर चर्चा के लिए एक अहम बैठक में हिस्सा लिया। ज्यादा जानकारी के साथ अंशु शर्मा।
5: कोविड-19 महामारी को लगभग 6 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा सबक आज भी दुनिया के सामने है कि कोई भी देश अकेले सुरक्षित नहीं रह सकता है। शुक्रवार को यूएन मुख्यालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में विश्व नेताओं ने इसी सबक की समीक्षा की और भावी महामारियों से निपटने की तैयारी मजबूत करने पर जोर दिया। WHO प्रमुख टेड्रोस एडेनॉम गेब्रेसस ने कोविड-19 को पिछले 100 वर्षों का सबसे गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य संकट बताया। उन्होंने कहा कि महामारियां सीमाओं का सम्मान नहीं करती, इसलिए देशों को साझा तैयारी, तेज कार्रवाई और समानता पर आधारित स्वास्थ्य सहयोग की जरूरत है। इसी दिशा में हाल ही में एक नई व्यवस्था पर बातचीत आगे बढ़ी है, ताकि भावी महामारी की स्थिति में जल्द से जल्द और सभी देशों तक समान रूप से सहायता पहुँच सके। WHO इस समझौते पर विचार विमर्श में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। UN उप महासचिव आमिना मोहम्मद ने चेतावनी दी कि जब संक्रमण धीमा पड़ता है तो अक्सर धन, वादे और राजनीतिक संकल्प भी कमजोर पड़ने लगते हैं। बैठक में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत बनाने, महामारी की रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया को बेहतर करने पर बल दिया गया।
2: हिमालय क्षेत्र में घातक बाढ़ की घटनाओं से लेकर यूरोपीय देशों के जंगलों में आग और झुलसा देने वाली गर्मी तक बदलती जलवायु और उसके दुष्परिणामों ने 2026 के दौरान बार बार आगाह किया है। यह स्पष्ट है कि आम नागरिकों की जलवायु संकट से रक्षा और जलवायु परिवर्तन की वजह बनने वाली हानिकारक ग्रीन हाउस गैस में तेज कटौती के लिए जल्द कदम उठाए जाने होंगे। इसी सिलसिले में विश्व नेताओं ने कार्यवाही की अपनी प्राथमिकताएं तय करने के लिए बुधवार को महासभा के सत्र के दौरान एक बैठक में चर्चा की। ज्यादा जानकारी के साथ सचिन गौड़।
3: इस बैठक के दौरान ऐसे ठोस रोडमैप को तैयार करने पर चर्चा हुई, जिसमें जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयले, तेल, गैस का इस्तेमाल रोकने के लिए स्पष्ट समय सीमाएं तय की जाएं। वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार G20 समूह के देशों से इस बदलाव को आगे ले जाने का आग्रह किया गया। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वित्तीय संसाधनों को जुटाना एक बड़ी चुनौती है। UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेश का कहना है कि जीवाश्म ईंधन कंपनियां बड़ा मुनाफा कमा रही हैं, जबकि इसकी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। महासचिव ने वर्ष 2035 तक 1300 अरब डॉलर की व्यवस्था करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है और कहा है कि विकासशील देशों की मदद के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर जुटाने होंगे। बैठक में नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के लिए नेटवर्क, बिजली ग्रिड तैयार करने और मौसमी आपदाओं के लिए समय पूर्व चेतावनी प्रणालियों पर भी जोर दिया गया। जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों में सबसे स्पष्ट नजर आने वाला प्रभाव है समुद्री जलस्तर का बढ़ना, जो कि कुछ देशों के लिए उनके अस्तित्व का संकट भी बन गया है, क्योंकि उनके डूबने का खतरा बढ़ रहा है। इस विशाल संकट से निपटने के मुद्दे पर केंद्रित एक अन्य बैठक में एक नए घोषणा पत्र को पारित किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूती देने और निचले तटीय इलाके वाले देशों को समर्थन देने की बात कही गई है। विश्वभर में तटीय इलाकों में रहने वाले 77 करोड़ लोग समुद्री जल स्तर में हो रही वृद्धि से प्रभावित हैं। इस संकट से निपटने के लिए जरूरी है कि वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि को रोकने के उपाय किए जाएं, बढ़ते जल स्तर और डूबने के खतरे का सामना कर रहे लोगों का समर्थन किया जाए, बचाव उपायों को अपनाया जाए और जरूरी हो तो कानूनी विकल्पों का भी सहारा लिया जाए।
2: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने संभावना की कला सबों को साथ लाना की विषय वस्तु से जमा हुए कलाकारों और क्यूरेटरों को संबोधित किया। उन्होंने उनके कार्य और सहयोग हेतु कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हुए कहा, मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। गियो डेका प्रद्वीप पर महिलाओं के कैद खाने में बनाए गए पवेलियन की याद की, जिसकी भेंट संत पापा फ्रांसिस ने की थी। यह केवल कैद खाने में कला के कार्यों से संबंधित नहीं था, बल्कि उसकी अक्सर दबी हुई सच्चाई को प्रकट करते हुए कला और शिक्षण की ओर ध्यान आकर्षित कराना था। मानव अपने जीवन में सदैव ही अपने अनंत लक्ष्य की ओर अग्रसर होने को आमंत्रित किया जाता है। वास्तव में कला अपने में एंटीना की भांति है, जो मानव हृदय के बड़े सवालों को पकड़ लेता है, जो कई बार एक रुदन में और बहुधा एक फुसफुसाहट में व्यक्त होती है, जो उन्हें सुनाती, देखती और बांटती है। कला के संबंध में संत अगस्टिन द्वारा हृदय की बेचैनी चाह की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए संत पापा लियो ने कहा, सच्ची कला अपने में बेचैनी प्रकट करती है। कलिसे ने कला को कभी भी एक वस्तु मात्र नहीं देखा है। संत अगस्टिन के विचारों को प्रकट करते हुए संत पापा ने कहा कि कला जो अपने में सच्ची होती लोगों के हृदयों में बेचैनी उत्पन्न करती है। कलिसे के लिए कला सुनने की एक बुनियादी जगह है, एक ऐसी जगह जहां कोई भी अपने को मानवता की उम्मीदों और उसके जख्मों, सुंदरता, न्याय और शांति की प्यास तथा उसके अर्थ से स्पर्श होता पाता है। संत पापा ने कहा, कला एक तरह की खोजी इंजन है। यह सूची क्रम से नहीं बल्कि पूछताछ से आगे बढ़ती है। संत पापा 14वें ने संत पापा लियो 6वें के वचनों को दोहराते हुए कहा, आज मैं भी आपसे कहता हूँ, कलिसे को आपकी जरूरत है, खासकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता की इस अवधि में, जिसमें मानव कला को मशीनों से बनी कला से अलग करना बहुत जरूरी हो गया है। हम कला और मशीन से उत्पन्न चीजों में सात्विक अंतर को पाते हैं। एल्गोरिदम में मानवीय चमक की कमी होती है। संस्कृति और कला इस वास्तविक चमक को बचाए रखती है। वैटिकन के लूर्द गोरोटो में 1300 लोगों ने, जिसमें 700 बच्चे शामिल थे, संत पापा लियो के संग 5 अलग अलग भाषाओं में विश्व शांति हेतु मरियम से प्रार्थना की। कुमारी मरियम को समर्पित अक्टूबर के महीने की पहली तारीख को विश्व के लाखों बच्चों ने विश्व शांति हेतु माता मरियम से रोजरी प्रार्थना की। करीब 1300 लोगों ने वैटिकन स्थित लूर्द के गोरोटो में माता मरियम के पास माला विनती की, जिसमें बच्चों की संख्या 700 थी। ये बच्चे रोम के विभिन्न पल्लियों और विद्यालयों से जमा हुए थे, जिन्होंने संत पापा लियो 14वें के संग मिलकर विश्व भर के अन्य 1 मिलियन बच्चों के संग रोजरी प्रार्थना इतालवी, स्पानी, उर्दू, जर्मन और अरबी भाषा में की। यह रोजरी बिनती दुनिया भर के लोगों के जख्मों और उम्मीदों की ओर ध्यान आकर्षित कराती है, जैसे कि यूक्रेन के बच्चे और युद्धग्रस्त पीड़ित देशों लेबनान, सीरिया और पवित्र भूमि यरूशलेम के परिवार, पाकिस्तान और दुनिया भर में सताए जा रहे ख्रिस्तियों के अलावे दक्षिणी सूडान में मेल मिलाप के साथ क्यूबा और वेनेजुएला के परिवारों में शांति और एकता हेतु। रोजरी माला की प्रार्थना के पूर्व ख्रिस्तीय एकता को बढ़ावा देने वाले विभाग के प्रमुख कार्डिनल कॉट कॉच ने बतलाया कि यह पहल बच्चों के लिए एक निमंत्रण है, जहां वे कुमारी मरियम के सानिध्य में आते हुए उनके संग मिलकर विश्व के दुखों को यीशु तक पहुंचा सकते हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा, छोटे बच्चों की आवाज जो पूरे भरोसे में अपने को ईश्वर के लिए समर्पित हैं, ईश्वर के हृदय में एक खास जगह बनाते हैं। उन्होंने कहा, रोजरी एक सरल प्रार्थना है जिसे हर कोई कर सकता है। संत पापा ने इस बात की याद दिलाई कि हम यीशु को उनके जीवन के महत्वपूर्ण समय और स्थितियों में देखते हैं। लूर्द के गोरोटो में रोजरी प्रार्थना में सहभागी हो रहे सबों को संत पापा ने इस बात की याद दिलाते हुए कहा कि हम अपने जीवन में अच्छा व्यवहार करें, चाहे हम जहां कहीं हों। उन्होंने कहा, प्रार्थना के साथ साथ अच्छे कार्य और प्रेम भरे काम भी होने चाहिए। केवल ऐसा करने के द्वारा हम शांति प्रसारित
करते हैं। उधर कार्डिनल मत्तियो जुप्पी मास्को की प्रेरिताई के तीसरे दौर से लौटे। अपने इस भेंट में उनकी वार्ता का एक मुख्य बिंदु खोए हुए लोगों की खोज, यूक्रेन के बच्चों की वापसी और यूक्रेन युद्ध बंदियों से भेंट रही। जुप्पी ने मास्को की अपनी प्रेरित यात्रा का तीसरा दौर पूरा किया और 30 सितंबर को वैटिकन लौटे। इसके पूर्व उन्होंने 2023 को जून के महीने में और अक्टूबर 2024 को अपना दूसरा दौर किया था। कार्डिनल ने यूक्रेन युद्ध बंदियों के एक कैंप का दौरा किया। उन्होंने उनसे बातें की और संत पापलियो 14वें की ओर से उनके प्रति सामीप्य के भाव प्रकट करते हुए इस बात की उम्मीद जताई कि वे जल्द ही घर लौट सकेंगे। मास्को में प्रेरितिक कार्यों के लिए नियुक्त अधिकारी महाधर्माध्यक्ष जोवानी एदे एलिनो ने इस 3 दिवसीय दौरे के दौरान कार्डिनल जुप्पी का साथ दिया। उधर जायद अवार्ड फॉर ह्यूमन फ्रेटर्निटी ने 2027 के लिए अपनी 5 सदस्यों वाली न्यायिक समिति की घोषणा की है, जो उन लोगों और संगठनों को पहचान प्रदान करती है जो मानवीय भ्रातृत्व और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। संस्कृति को प्रोत्साहन देने हेतु गठित पम धम पीठ के सेवानिवृत्त अध्यक्ष कार्डिनल जियान फ्रांको रावसी को 2027 के जायद अवार्ड फॉर ह्यूमन फ्रेटर्निटी की न्यायिक समिति में शामिल किया गया है। 30 सितंबर को अबू धाबी में यह घोषित किया गया कि 5 सदस्यों वाला यह दल अवार्ड के 8वें संस्करण में पुरस्कार प्राप्त करने वालों का चुनाव करेगा। यह वार्षिक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2009 में अबू धाबी में संत पापा फ्रांसिस और अल अजहर ग्रैंड इमाम अहमद अल तैयब के बीच हुई मिलन के उपरांत शुरू किया गया था। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पवित्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट पर,

0: और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेष कर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद के पहला भेद। गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
2: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
2: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
2: मतलब पापियों के मन फिराव के लिए।
0: पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर,

0: गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में पाए जाते हैं,
2: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता
1: हम पर दया कर,
0: पवित्र आत्मा ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: संत मरियम
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वर की पवित्र माँ
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुमारियों की पवित्र कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्त की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वरीय कृपा की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति निर्मल माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति शुद्ध माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुमारी माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: निष्कलंक माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रिय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रशंसनीय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सुसमति की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सृष्टिकर्ता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: मुक्तिदाता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति चौकस कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्तुति योग्य कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शक्तिमती कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दयालु कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मनिष्ठ कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हमारे आनंद का मूल
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पवित्र आत्मा का मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भक्ति का उत्तम पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आध्यात्मिक गुलाब
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दाऊद का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हस्तिदंत का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ण मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संधि की मंजूषा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भोर का तारा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: रोगियों का स्वास्थ्य
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पापियों की शरण
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दुखियों का दिलासा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्तियों की सहायता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्गदूतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्म पुरखों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: नबियों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रेरितों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शहीदों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मवीरों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति पवित्र माला की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शांति की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर।

हमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। पिता और

0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि संपूर्ण कलीसिया में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रेरिताई की प्रतिस्थापना हो, ताकि मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव और कलंक को अभिभूत किया जा सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, ईश्वर ने मानव को अपने अनुरूप बनाया और सभी तरह की अच्छाइयों और गुणों से भर दिया है। लेकिन दुनिया में हो रही रोज दिन की घटनाएं, बुराइयां और कार्य को देखते हुए हमारे जहन में संदेह भरा यह सवाल उठता है कि यदि ईश्वर ने हम मानव को अच्छाइयों और गुणों से विभूषित किया है, तो दुनिया में इतनी सारी बुराइयां, हिंसा, युद्ध, धोखाधड़ी क्यों? मानव के जीवन में ये सारी बातें कहाँ से आती हैं? ये कहाँ से उत्पन्न होती हैं? जहाँ हम स्वयं अपने परिवार के लोगों को भी जान से मार डालने को उतारू हो जाते हैं। दुनिया की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि क्या मानव के लिए अच्छा होना इतना कठिन है? हम अच्छा बनने के बजाय क्यों बुरा बन जाते और दूसरों को हानि पहुंचाते हैं? हम क्यों दूसरों के जीवन की चीजों को हथियाना चाहते और उनके द्वारा अपने लिए फायदा उठाने की चाह रखते हैं? श्रोताओं, वर्ष के 27वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिया गया सुसमाचार का संदर्भ हमारे लिए पूरे मानव समाज में व्याप्त बुराइयों का हाल व्यक्त करता है। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात की आत्म परख करें कि हम में बुराई की उत्पत्ति कहाँ से होती है। वे कौन सी बातें हैं जो हमें अच्छा बनने से रोकती हैं? क्या किसी के बारे में अच्छा सोचना और अच्छा करना हमारे लिए इतना कठिन है?
1: यीशु ने महायाजक और जनता के नेताओं से कहा, एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी भूमिधर ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए असामियों के पास अपने नौकरों को भेजा, किंतु असामियों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थरों से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और असामियों ने उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने यह सोचकर अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे, किंतु पुत्र को देखकर असामियों ने एक दूसरे से कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत पर कब्जा कर लें। उन्होंने उसे पकड़ लिया और दाखबारी से बाहर निकालकर मार डाला।
0: श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमारे जीवन को परिशुद्ध करे, जिससे हम अपने में व्याप्त बुरी बातों और नकारात्मक चीजों से मुक्त हो सकें, जो हमें दूसरों के लिए अच्छा बनने के मार्ग में रोड़ा उत्पन्न करते हैं। श्रोताओं, नबी इसाइस के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ दाखबारी की चर्चा करता है, जिसे स्वामी ने तैयार किया कि उसे अच्छी फसल मिले, लेकिन उस दाखबारी से उसके लिए खट्टे अंगूर की उपज मिलती है। दाखबारी का मालिक इस बात से दुखित और नाराज अपनी दाखबारी को उजाड़ने की सोचता है। वह उसे उजाड़ झाड़ झंखड़ की स्थिति में रहने देने की चाह रखता है, क्योंकि दाखबारी पर किया गया मेहनत उसके हाथों में निराशा लाती है। श्रोताओं, दाखबारी का यहाँ तात्पर्य मानव जीवन से है। दुनिया में हमारा यह भौतिक जीवन ईश्वर की दाखबारी की भांति है, जिसे उन्होंने स्वयं अपने हाथों से सजाया और संवारा है। उन्होंने इस दुनिया में हमारे लिए मेहनत की है और प्रतिदिन मेहनत करते हैं। अतः हमारे जीवन रूपी दाखबारी से वे अच्छी उपज की चाह रखते हैं, जो हमारे लिए सिर्फ नहीं बल्कि सारे मानव समाज के लिए ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति का एक स्थल बनता हो, जहां हमारे सुंदर अच्छे और भले कार्यों को देखकर सृष्टिकर्ता ईश्वर की महिमा और स्तुति की जाती हो। लेकिन बहुधा हम अपने जीवन के द्वारा अच्छे और मीठे फल उत्पन्न नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने जीवन में अच्छा फल उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम सबों में वे क्षमताएं और योग्यताएं हैं जिनके द्वारा हम अच्छा फल उत्पन्न करने, दुनिया को प्रेम, शांति और न्याय का एक स्थल बनने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर उसी के लिए हमें चुना और अच्छा बनाया है। श्रोताओं, फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमें अपने जीवन की इस स्थिति को देखने और समझने का आह्वान करता है। संत पौलुस हमें किसी बात की चिंता नहीं करने को कहते हैं। वे हमें अपनी जरूरतों में प्रार्थना करने और ईश्वर का धन्यवाद अदा करने को कहते हैं। ऐसा करने के द्वारा ईश्वर की शांति हमारे हृदयों और विचारों को यीशु में सुरक्षित रखती है। प्रेरित हमें जो सच है, आदरणीय है, न्यायसंगत, निर्दोष, अच्छा, मनोहर, उत्तम और प्रशंसनीय है, उन बातों पर चिंतन करते हुए उनके अनुरूप अपने कार्यों को पूरा करने को कहते हैं, क्योंकि ख्रिस्त ने हमें इन्हीं बातों की शिक्षा दी है। लेकिन आज के सुसमाचार में हमने ठीक इन बातों के विपरीत हिंसा, षड्यंत्र, बुराई और हत्या की बातें सुनी। आज दुनिया की स्थिति यही है। वहीं यदि हम अपने जीवन की आत्मपरख करें तो हम इस बात को पाते हैं कि हम सबों को अच्छी और नेकी करने की शिक्षा दी गई है, यद्यपि हम उनके अनुरूप आचरण करने में अयोग्य होते हैं। श्रोताओं, सुसमाचार में हमने सुना कि स्वामी ने हमारे लिए सारी चीजों को तैयार करके दिया है, जिससे हम उनके द्वारा बनाई और दी गई चीजों की देखरेख करें, उन्हें फलहित करें, उनका लाभ उठाएं और ईश्वर को उनके हिस्से का उचित रसद अदा करें। लेकिन अपने स्वार्थ और लोभ के कारण, जैसे कि उन असामियों ने किया, हम बहुधा ईश्वर से मिले सारी चीजों का उपयोग अपने लिए करते और ईश्वर को अपने से दरकिनार कर देते हैं। वे चीजें जिन्हें हमें उन्हें देने की जरूरत है, विशेषकर हमारे हृदय और हमारे भले कार्य, हम अपने में आनाकानी करते हैं। यह ईश्वर के प्रति हमारे व्यवहार को प्रकट करता है। जहां मानव अपने में लोभ, लालच और स्वार्थ के भाव से ग्रसित है, लोभ और स्वार्थ के कारण ही हम आज दुनिया में बुराइयों को एक के बाद एक पनपता हुआ पाते हैं। अपने लोभ और स्वार्थ में हम दाखबारी के फल तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि उन असामियों की भांति पूरी दाखबारी का स्वामित्व ही हासिल करना चाहते हैं। इस भांति हम यह भी भूल जाते कि हम दाखबारी के स्वामी नहीं, बल्कि उसकी देखरेख करने वाले सेवक मात्र हैं। श्रोताओं, स्वामी हमें दाखबारी के फलों को दूसरों के संग भी साझा करने को कहते हैं, जिसे वे कई लोगों के रूप में हमारे जीवन में भेजते हैं। आइए हम स्वामी से निवेदन करें कि वे हमें दुनिया में भेजे जाने के मर्म को समझने में मदद करें, जिससे हम उदारता में अपने जीवन की चीजों को दूसरों के संग बांट सकें।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। कैंपो सांतो में संत मरिया के परमधाम पीठ ट्यूटोनी कॉलेज की 150वीं सालगिरह पर वहां के सदस्यों को संबोधित करते हुए पोप लियो चौथवें ने कॉलेज के लंबे इतिहास को याद किया और इसके सदस्यों से पेत्रुस के उत्तराधिकारी के साथ अपनी नज़दीकी बनाए रखने तथा विश्वास की भरोसेमंद गवाही देने का प्रोत्साहन दिया। पोप ने कहा, ख्रिस्त में विश्वास ही विश्वासों के बीच एकता का सिद्धांत है। उन्होंने याद दिलाया कि प्रभु ने अपने शिष्यों के एक होने के लिए प्रार्थना की थी। पोप ने कहा कि ऐसी एकता हमारी गवाही की विश्वसनीयता के लिए एक जरूरी तत्व है। पोप ने ये बातें शनिवार को वैटिकन में तब कही जब उन्होंने कैंपो सांतो के संत मरिया परमधाम पीठ ट्यूटोनी कॉलेज समुदाय को उसकी स्थापना की 150वीं सालगिरह पर संबोधित किया। उन्होंने इसके सदस्यों को एकता के लिए ख्रिस्त की प्रार्थना को अपना बनाने और यह पुष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया कि कॉलेज एक ऐसी जगह बने जहां एकता को सच्चाई से जिया जा सके और दिखाया जा सके। पोप ने कैंपो सांतो के लंबे इतिहास को याद किया जो 8वीं सदी से रोमन साम्राज्य के इलाकों से रोम आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक खास जगह थी। पोप ने याद किया कि 19वीं सदी में यह जगह उन देशों के पुरोहितों के लिए खास अहमियत रखती थी। उस समय जब जर्मन साम्राज्य में कुल्तुर कैंप की कलीसिया से जुड़ी नीतियों की वजह से प्रेरितिक सेवा में बहुत रुकावट आ रही थी, यह पूरी तरह नामुमकिन हो गई थी। पोप ने बतलाया कि कैंपो सांतो ट्यूटोनी के महान भाईचारे के आतिथ्य से यह जगह जर्मन बोलने वाले इलाकों के पुरोहितों के लिए शरण एवं पढ़ाई की जगह बन गई। उन्होंने आगे बतलाया कि कैंपो सांतो बाद में क्रिश्चियन आर्कियोलॉजी, चर्च इतिहास एवं क्रिश्चियन मूल पर रिसर्च के लिए एक महत्वपूर्ण सेंटर बन गया। पोप ने वहां मौजूद लोगों से कहा कि वे इस इतिहास के शानदार नतीजों को आभार के साथ देख सकते हैं। पोप ने आज कलीसिया के लिए कॉलेज की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, आज भी पुरोहितों के लिए कॉलेज प्रशिक्षण के लिए एक सुरक्षित जगह बनना चाहता है ताकि वहां रहने वाले पुरोहित अपनी बौद्धिक और आध्यात्मिक यात्रा को और गहरा कर सकें। उन्होंने समझाया कि इस प्रशिक्षण से वे हमारे समय की बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए अपने देश के लोगों के सवालों का जवाब दे पाएंगे। पोप ने कॉलेज की एक खास बात पर भी जोर दिया, प्रेरित संत पेत्रुस की कब्र के पास इसकी अनोखी जगह है। पोप ने कहा कि संस्था की शुरुआत से ही यह करीबी रोमी परमाध्यक्ष के प्रति निष्ठा के साथ साथ चली आ रही है। उन्होंने कहा, इस सम्मान में एक समर्पण भी शामिल है। पेत्रुस के उत्तराधिकारी एवं प्रेरितों के उस विश्वास के साथ इस करीबी एवं एकता को बनाए रखना जिसकी वह घोषणा करते हैं। फिर पोप ख्रिस्त एकता के महत्व पर लौटे और कॉलेज के सदस्यों से यीशु की प्रार्थना को अपना बनाने का आग्रह किया। पोप लियो ने कहा, यीशु के दिल से की गई प्रार्थना को अपना बनाएं और उनसे यह वरदान मांगने का आग्रह किया ताकि कॉलेज समुदाय एक ऐसी जगह बन सके जहां एकता को सच्चाई से जिया जा सके और दिखाया जा सके। 7 अक्टूबर को पोप लियो 14वें पोप फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन अमोरिस लेतित्सिया की 10वीं सालगिरह पर पूर्वी कलीसियाओं के प्रमुखों और धर्मदक्ष सम्मेलनों के अध्यक्षों के साथ एक मीटिंग शुरू करेंगे जिसे वैटिकन प्रेस कार्यालय में पेश किया गया। बुनियादी सवाल यह है कि प्रेरिताय को जोश के साथ कैसे नवीकृत किया जाए और परिवारों को कलीसिया के जीवन एवं मिशन में अधिक से अधिक सक्रिय सहभागी कैसे बनाया जाए। लोक धर्मी परिवार और जीवन के लिए गठित परमधाम पीठ विभाग के उप सचिव गब्रियला गम्बिनो ने पोप लियो 14वें के पूर्वी कलीसियाओं के प्रमुखों और धर्मदक्ष सम्मेलनों के अध्यक्षों के साथ होने वाली मीटिंग का मतलब समझाया जिसकी विषय वस्तु है अमोरिस लेतित्सिया 10 साल बाद आज परिवारों के साथ सुसमाचार का प्रचार करना जो 7 से 14 अक्टूबर को संत पॉल सभागार में सम्पन्न होगी। 2 अक्टूबर को वैटिकन प्रेस कार्यालय में हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पोप की इच्छा से शुरू हुए पहल की विस्तृत जानकारी दी गई। सभा 187 प्रतिभागियों के साथ एक बंद कमरे में होगी जिसमें 115 धर्माध्यक्ष सम्मेलनों से 111 अध्यक्ष और प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व करेंगे। जेसुइट फादर जाकोमो कोस्टा जो सिनट के महासचिव के सलाहकार हैं और अगले हफ्ते की मीटिंग में प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार हैं, उन्होंने समझाया कि यह कोई सिनट नहीं है
और ना ही किसी सिनट को जारी रखना है, बल्कि उन्होंने कहा कि यह बड़े बदलाव के समय में कलीसिया की आवाज सुनने का मौका है। गंबिनों ने सुनने और आत्मपरख वाली एक यात्रा की आवश्यकता पर जोर दिया, जो हाल के सालों में धर्मदर्शन द्वारा अदली मीना मुलाकात के दौरान बताई गई जरूरतों के साथ साथ प्रेरिताई के काम में आने वाली मुश्किलों और परिवारों को अपने रिश्तों और दैनिक जीवन में आने वाली चुनौतियों की चिंता से उत्पन्न हुई है। इसके अलावा पेश किया गया कि आंकड़ा अभी चल रहे एक जरूरी सांस्कृतिक बदलाव को दिखाता है। उदाहरण के लिए पोलैंड में पिछले 5 सालों में होने वाली धार्मिक विवाह की संख्या में 45% की गिरावट आई है। ऑस्ट्रेलिया में 1970 और 2024 के बीच यह आंकड़ा 88% से गिरकर 16% हो गया है। उप सचिव ने कहा, ये ऐसे संकेत हैं जो अलग अलग हालात के बावजूद शादी करने के फैसले के साथ चलने और परिवार में विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए अधिक मजबूत सहयोग देने की जरूरत की ओर इशारा करते हैं। उन्होंने एक ऐसी प्रेरितिक पहुंच के महत्व पर जोर दिया जो शादी के बहुत पहले शुरू होना चाहिए और जो लोगों के साथ उनके पूरे जीवन, खासकर मुश्किल समय में रहना चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस के अंत में वक्ताओं ने सुझाव दिया कि वैटिकन का वादा है सुनने और आत्मपरख के नए रास्ते खोले जाएं, ताकि आज परिवारों तक और परिवारों के साथ सुसमाचार का प्रचार किया जा सके। पोप लियो 14वें द्वारा मुश्किलों से जूझ रहे टाइग्रे इलाके के लिए की गई अपील के बाद इथोपिया के धर्माध्यक्षों ने भी शांति और प्रार्थना के लिए अपनी अपील जारी की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हथियारों से लड़ाई मौजूदा समस्याओं को और खराब करती है और इस दर्दनाक सच्चाई की निंदा की है कि इससे सबसे कमजोर लोगों को नुकसान होता है। इथोपियाई कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन सभी पार्टियों से दिल से अपील करता है कि वे हमारे बीच भाईचारे की भावना को फिर से जगाकर माफी और मेल मिलाप के लिए अपने दिल खोलें, ताकि हमारा देश एक सही, स्थायी एवं सच्ची शांति का अनुभव कर सके। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि संपूर्ण कलीसिया में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रेरिताई की प्रतिस्थापना हो, ताकि मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव और कलंक को अभिभूत किया जा सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज।

0: श्रोताओं, ईश्वर ने मानव को अपने अनुरूप बनाया और सभी तरह की अच्छाइयों और गुणों से भर दिया है, लेकिन दुनिया में हो रही रोज दिन की घटनाएं, बुराइयां और कार्य को देखते हुए हमारे जहन में संदेह भरा यह सवाल उठता है कि यदि ईश्वर ने हम मानव को अच्छाइयों और गुणों से विभूषित किया है तो दुनिया में इतनी सारी बुराइयां, हिंसा, युद्ध, धोखाधड़ी क्यों? मानव के जीवन में ये सारी बातें कहाँ से आती हैं? ये कहाँ से उत्पन्न होती हैं? जहाँ हम स्वयं अपने परिवार के लोगों को भी जान से मार डालने को उतारू हो जाते हैं। दुनिया की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि क्या मानव के लिए अच्छा होना इतना कठिन है? हम अच्छा बनने के बजाय क्यों बुरा बन जाते और दूसरों को हानि पहुंचाते हैं? हम क्यों दूसरों के जीवन की चीजों को हथियाना चाहते और उनके द्वारा अपने लिए फायदा उठाने की चाह रखते हैं? श्रोताओं, वर्ष के 27वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिया गया सुसमाचार का संदर्भ हमारे लिए पूरे मानव समाज में व्याप्त बुराइयों का हाल व्यक्त करता है। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने में इस बात की आत्म परख करें कि हम में बुराई की उत्पत्ति कहाँ से होती है। वे कौन सी बातें हैं जो हमें अच्छा बनने से रोकती हैं? क्या किसी के बारे में अच्छा सोचना और अच्छा करना हमारे लिए इतना कठिन है?
1: यीशु ने महायाजक और जनता के नेताओं से कहा, एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी भूमिधर ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए असामियों के पास अपने नौकरों को भेजा, किंतु असामियों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थरों से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और असामियों ने उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने यह सोचकर अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे, किंतु पुत्र को देखकर असामियों ने एक दूसरे से कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत पर कब्जा कर लें। उन्होंने उसे पकड़ लिया और दाखबारी से बाहर निकाल कर मार डाला।
0: श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमारे जीवन को परिशुद्ध करे, जिससे हम अपने में व्याप्त बुरी बातों और नकारात्मक चीजों से मुक्त हो सकें, जो हमें दूसरों के लिए अच्छा बनने के मार्ग में रोड़ा उत्पन्न करते हैं। श्रोताओं, नबी इसाईस के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ दाखबारी की चर्चा करता है, जिसे स्वामी ने तैयार किया कि उसे अच्छी फसल मिले, लेकिन उस दाखबारी से उसके लिए खट्टे अंगूर की उपज मिलती है। दाखबारी का मालिक इस बात से दुखित और नाराज अपनी दाखबारी को उजाड़ने की सोचता है। वह उसे उजाड़ झाड़ झंखड़ की स्थिति में रहने देने की चाह रखता है, क्योंकि दाखबारी पर किया गया मेहनत उसके हाथों में निराशा लाती है। श्रोताओं, दाखबारी का यहाँ तात्पर्य मानव जीवन से है। दुनिया में हमारा यह भौतिक जीवन ईश्वर की दाखबारी की भांति है, जिसे उन्होंने स्वयं अपने हाथों से सजाया और संवारा है। उन्होंने इस दुनिया में हमारे लिए मेहनत की है और प्रतिदिन मेहनत करते हैं। अतः हमारे जीवन रूपी दाखबारी से वे अच्छी उपज की चाह रखते हैं, जो हमारे लिए सिर्फ नहीं बल्कि सारे मानव समाज के लिए ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति का एक स्थल बनता हो, जहां हमारे सुंदर, अच्छे और भले कार्यों को देखकर सृष्टिकर्ता ईश्वर की महिमा और स्तुति की जाती हो। लेकिन बहुधा हम अपने जीवन के द्वारा अच्छे और मीठे फल उत्पन्न नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने जीवन में अच्छा फल उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम सबों में वे क्षमताएं और योग्यताएं हैं जिनके द्वारा हम अच्छा फल उत्पन्न करने, दुनिया को प्रेम, शांति और न्याय का एक स्थल बनने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर उसी के लिए हमें चुना और अच्छा बनाया है। श्रोताओं, फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमें अपने जीवन के इस स्थिति को देखने और समझने का आह्वान करता है। संत पौलुस हमें किसी बात की चिंता नहीं करने को कहते हैं। वे हमें अपनी जरूरतों में प्रार्थना करने और ईश्वर का धन्यवाद अदा करने को कहते हैं। ऐसा करने के द्वारा ईश्वर की शांति हमारे हृदयों और विचारों को यीशु में सुरक्षित रखती है। प्रेरित हमें जो सच है, आदरणीय है, न्यायसंगत, निर्दोष, अच्छा, मनोहर, उत्तम और प्रशंसनीय है, उन बातों पर चिंतन करते हुए उनके अनुरूप अपने कार्यों को पूरा करने को कहते हैं, क्योंकि ख्रिस्त ने हमें इन्हीं बातों की शिक्षा दी है। लेकिन आज के सुसमाचार में हमने ठीक इन बातों के विपरीत हिंसा, षड्यंत्र, बुराई और हत्या की बातें सुनी। आज दुनिया की स्थिति यही है। वहीं यदि हम अपने जीवन की आत्मपरख करें तो हम इस बात को पाते हैं कि हम सबों को अच्छी और नेकी करने की शिक्षा दी गई है, यद्यपि हम उनके अनुरूप आचरण करने में अयोग्य होते हैं। श्रोताओं, सुसमाचार में हमने सुना कि स्वामी ने हमारे लिए सारी चीजों को तैयार करके दिया है, जिससे हम उनके द्वारा बनाई और दी गई चीजों की देखरेख करें, उन्हें फलहित करें, उनका लाभ उठाएं और ईश्वर को उनके हिस्से का उचित रसद अदा करें। लेकिन अपने स्वार्थ और लोभ के कारण, जैसे कि उन असामियों ने किया, हम बहुधा ईश्वर से मिले सारी चीजों का उपयोग अपने लिए करते और ईश्वर को अपने से दरकिनार कर देते हैं। वे चीजें जिन्हें हमें उन्हें देने की जरूरत है, विशेषकर हमारे हृदय और हमारे भले कार्य, हम अपने में आनाकानी करते हैं। यह ईश्वर के प्रति हमारे व्यवहार को प्रकट करता है। जहां मानव अपने में लोभ, लालच और स्वार्थ के भाव से ग्रसित है, लोभ और स्वार्थ के कारण ही हम आज दुनिया में बुराइयों को एक के बाद एक पनपता हुआ पाते हैं। अपने लोभ और स्वार्थ में हम दाखबारी के फल तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि उन असामियों की भांति पूरी दाखबारी का स्वामित्व ही हासिल करना चाहते हैं। इस भांति हम यह भी भूल जाते कि हम दाखबारी के स्वामी नहीं, बल्कि उसकी देखरेख करने वाले सेवक मात्र हैं। श्रोताओं, स्वामी हमें दाखबारी के फलों को दूसरों के संग भी साझा करने को कहते हैं, जिसे वे कई लोगों के रूप में हमारे जीवन में भेजते हैं। आइए हम स्वामी से निवेदन करें कि वे हमें दुनिया में भेजे जाने के मर्म को समझने में मदद करें, जिससे हम उदारता में अपने जीवन की चीजों को दूसरों के संग बांट सकें।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। कैंपो सांतो में संत मरिया के परमधाम पीठ है ट्यूटोनी कॉलेज की 150वीं सालगिरह पर वहां के सदस्यों को संबोधित करते हुए पोप लियो चौथवे ने कॉलेज के लंबे इतिहास को याद किया और इसके सदस्यों से पेत्रुस के उत्तराधिकारी के साथ अपनी नज़दीकी बनाए रखने तथा विश्वास की भरोसेमंद गवाही देने का प्रोत्साहन दिया। पोप ने कहा, ख्रिस्त में विश्वास ही विश्वासियों के बीच एकता का सिद्धांत है। उन्होंने याद दिलाया कि प्रभु ने अपने शिष्यों के एक होने के लिए प्रार्थना की थी। पोप ने कहा कि ऐसी एकता हमारी गवाही की विश्वसनीयता के लिए एक जरूरी तत्व है। पोप ने ये बातें शनिवार को वैटिकन में तब कही जब उन्होंने कैंपो सांतो के संत मरिया परमधाम पीठ ट्यूटोनी कॉलेज समुदाय को उसकी स्थापना की 150वीं सालगिरह पर संबोधित किया। उन्होंने इसके सदस्यों को एकता के लिए ख्रिस्त की प्रार्थना को अपना बनाने और यह पुष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया कि कॉलेज एक ऐसी जगह बने जहाँ एकता को सच्चाई से जिया जा सके और दिखाया जा सके। पोप ने कैंपो सांतो के लंबे इतिहास को याद किया जो 8वीं सदी से रोमन साम्राज्य के इलाकों से रोम आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक खास जगह थी। पोप ने याद किया कि 19वीं सदी में यह जगह उन देशों के पुरोहितों के लिए खास अहमियत रखती थी। उस समय जब जर्मन साम्राज्य में कुल्तुर कैंप की कलीसिया से जुड़े नीतियों की वजह से प्रेरितिक सेवा में बहुत रुकावट आ रही थी, यह पूरी तरह नामुमकिन हो गई थी। पोप ने बतलाया कि कैंपो सांतो ट्यूटोनी के महान भाईचारे के आतिथ्य से यह जगह जर्मन बोलने वाले इलाकों के पुरोहितों के लिए शरण एवं पढ़ाई की जगह बन गई। उन्होंने आगे बतलाया कि कैंपो सांतो बाद में क्रिश्चियन आर्कियोलॉजी, चर्च इतिहास एवं क्रिश्चियन मूल पर रिसर्च के लिए एक महत्वपूर्ण सेंटर बन गया। पोप ने वहां मौजूद लोगों से कहा कि वे इस इतिहास के शानदार नतीजों को आभार के साथ देख सकते हैं। पोप ने आज कलीसिया के लिए कॉलेज की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, आज भी पुरोहितों के लिए कॉलेज प्रशिक्षण के लिए एक सुरक्षित जगह बनना चाहता है ताकि वहां रहने वाले पुरोहित अपनी बौद्धिक और आध्यात्मिक यात्रा को और गहरा कर सकें। उन्होंने समझाया कि इस प्रशिक्षण से वे हमारे समय की बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए अपने देश के लोगों के सवालों का जवाब दे पाएंगे। पोप ने कॉलेज की एक खास बात पर भी जोर दिया, प्रेरित संत पेत्रुस की कब्र के पास इसकी अनोखी जगह है। पोप ने कहा कि संस्था की शुरुआत से ही यह करीबी रोमी परमाध्यक्ष के प्रति निष्ठा के साथ साथ चली आ रही है। उन्होंने कहा, इस सम्मान में एक समर्पण भी शामिल है। पेत्रुस के उत्तराधिकारी एवं प्रेरितों के उस विश्वास के साथ इस करीबी एवं एकता को बनाए रखना जिसकी वह घोषणा करते हैं। फिर पोप ख्रिस्त एकता के महत्व पर लौटे और कॉलेज के सदस्यों से यीशु की प्रार्थना को अपना बनाने का आग्रह किया। पोप लियो ने कहा, यीशु के दिल से की गई प्रार्थना को अपना बनाएं और उनसे यह वरदान मांगने का आग्रह किया ताकि कॉलेज समुदाय एक ऐसी जगह बन सके जहां एकता को सच्चाई से जिया जा सके और दिखाया जा सके। 7 अक्टूबर को पोप लियो 14वें पोप फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन आमोरिस लेतिट्सिया की 10वीं सालगिरह पर पूर्वी कलीसियाओं के प्रमुखों और धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के अध्यक्षों के साथ एक मीटिंग शुरू करेंगे जिसे वैटिकन प्रेस कार्यालय में पेश किया गया। बुनियादी सवाल यह है कि प्रेरिताई को जोश के साथ कैसे नवीकृत किया जाए और परिवारों को कलीसिया के जीवन एवं मिशन में अधिक से अधिक सक्रिय सहभागी कैसे बनाया जाए। लोक धर्मी परिवार और जीवन के लिए गठित परमधाम पीठ विभाग के उप सचिव गब्रियला गम्बिनो ने पोप लियो 14वें की पूर्वी कलीसियाओं के प्रमुखों और धर्माध्यक्ष सम्मेलनों के अध्यक्षों के साथ होने वाली मीटिंग का मतलब समझाया जिसकी विषय वस्तु है आमोरिस लेतिट्सिया 10 साल बाद आज परिवारों के साथ सुसमाचार का प्रचार करना जो 7 से 14 अक्टूबर को संत पॉल सभागार में सम्पन्न होगी। 2 अक्टूबर को वैटिकन प्रेस कार्यालय में हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पोप की इच्छा से शुरू हुए पहल की विस्तृत जानकारी दी गई। सभा 187 प्रतिभागियों के साथ एक बंद कमरे में होगी जिसमें 115 धर्माध्यक्ष सम्मेलनों से 111 अध्यक्ष और प्रतिनिधि प्रतिनिधित्व करेंगे। जेसुइट फादर जाकोमो कोस्टा जो सिनट के महासचिव के सलाहकार हैं और अगले हफ्ते की मीटिंग में प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार हैं, उन्होंने समझाया कि यह कोई सिनट नहीं है
और न ही किसी सिनट को जारी रखना है, बल्कि उन्होंने कहा कि यह बड़े बदलाव के समय में कलीसिया की आवाज़ सुनने का मौका है। गम्बिनो ने सुनने और आत्मपरक वाली एक यात्रा की आवश्यकता पर जोर दिया, जो हाल के सालों में धर्मदर्शन द्वारा अदली मीना मुलाकात के दौरान बताई गई जरूरतों के साथ साथ प्रेरिताई के काम में आने वाली मुश्किलों और परिवारों को अपने रिश्तों और दैनिक जीवन में आने वाली चुनौतियों की चिंता से उत्पन्न हुई है। इसके अलावा पेश किया गया कि आंकड़ा अभी चल रहे एक जरूरी सांस्कृतिक बदलाव को दिखाता है। उदाहरण के लिए पोलैंड में पिछले 5 सालों में होने वाली धार्मिक विवाह की संख्या में 45% की गिरावट आई है। ऑस्ट्रेलिया में 1970 और 2024 के बीच यह आंकड़ा 88% से गिरकर 16% हो गया है। उपसचिव ने कहा, ये ऐसे संकेत हैं जो अलग अलग हालात के बावजूद शादी करने के फैसले के साथ चलने और परिवार में विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए अधिक मजबूत सहयोग देने की जरूरत की ओर इशारा करते हैं। उन्होंने एक ऐसी प्रेरितिक पहुंच के महत्व पर जोर दिया जो शादी के बहुत पहले शुरू होना चाहिए और जो लोगों के साथ उनके पूरे जीवन, खासकर मुश्किल समय में रहना चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस के अंत में वक्ताओं ने सुझाव दिया कि वैटिकन का वादा है सुनने और आत्मपरक के नए रास्ते खोले जाएं, ताकि आज परिवारों तक और परिवारों के साथ सुसमाचार का प्रचार किया जा सके। पोप लियो 14वें द्वारा मुश्किलों से जूझ रहे टाइग्रे इलाके के लिए की गई अपील के बाद इथोपिया के धर्माध्यक्षों ने भी शांति और प्रार्थना के लिए अपनी अपील जारी की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हथियारों से लड़ाई मौजूदा समस्याओं को और खराब करती है और इस दर्दनाक सच्चाई की निंदा की है कि इससे सबसे कमजोर लोगों को नुकसान होता है। इथोपियाई कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन सभी पार्टियों से दिल से अपील करता है कि वे हमारे बीच भाईचारे की भावना को फिर से जगाकर माफी और मेल मिलाप के लिए अपने दिल खोलें, ताकि हमारा देश एक सही, स्थायी एवं सच्ची शांति का अनुभव कर सके। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।